पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा सुमानी साध का संग गोचर मिले साध का संग सदा पर फुल साध का संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संगो सब की

ब्रह्म ज्ञानी सब सह नवासना ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता। ब्रह्म ज्ञानी कह हो अचंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन। ब्रह्म ज्ञान निष्कर प्रवाह ब्रह्म ना ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस फुट पाकी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नान ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञान की क्यों तनाए ब्रह्म ज्ञान का सर मन माए। ब्रह्म ज्ञान का कौन जाने फिर ब्रह्म ज्ञान को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञान का कथन जाया दाखर ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञान की मत कौन बखाने।

नानक को अपरस सगल निस्तारे अष्टपति। मिथ्या नाही रसना परसमान में प्रीत नरंजन दस पर त्रै रोपना पेखे नेत्र।